0: सुमित मैं आइए हम लोग आने में 7 बजे का था
1: इस समय को साथ में जेतु सुनचादी पसल पुसाल पेट्रोल पंप नजिक रहेको डिपार्टमेंट स्टोर संग जोड़िएको 5 गते कुना को लाइन जैसी 15 जाने बाटो तर्फ विश्वासिलो भर पर्दो र आकर्षक डिजाइन का गरगहना खरीद बिक्री करने
0: ठाउँ।

फ्रेश आदि खुला खबर को साथ में हिमाल सुनसादी पसल उच्च क्वालिटी का आकर्षक कर गहना ग्यारेटी का साथ खरीद बिक्री असल तपाईकै सुख दुख को साथी हिमाल सुनसादी पसल वालिंग बजार सैंसा।

एस आदि खोला खबर को साथ में हिमाल सुन चाँदी पसल उच्च क्वालिटी का आकर्षक गरगहना ग्यारेन्टी का साथ खरीद बिक्री असल तपाईकै सुख दुख को साथी हिमाल सुन चाँदी पसल वालिंग बजार सैंसा

0: सीआईएन को साझा खबरबाट लील प्रकाश चन्दको नमस्कार। साझा खबर देशभरिका सामुदायिक रेडियो सीआईएन को फेसबुक पेज र युट्यूब सीआईएन च्यानलबाट पनि सुन्न सकिन्छ। साढ़े चार महीना में देशभर विपद का 5,000 भन्दा धेरै घटना, 250 को मृत्यु, सर्प को टोकाई 69 जना ज्यान गुमाए, पहिरो को जोखिम पनि धेरै, मधेशमा भने पर्याप्त पानी परेन।
1: बागमती कर्णाली सुदूर पश्चिम प्रदेश का थोड़े स्थान में कोशी प्रदेश का दुई ठावे अध्यमसम को वर्षा भईर मधेश प्रदेश में अभी कति वर्षा भईर अवस्था छैन।